सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स, जहां पर क्रिकेट जगत की खबरें जो है वो हमने आप तक पहुंचाई स्टम्प्ड, जो हमारा विशेष प्रोग्राम है उसके माध्यम से, और वापस लौट चुके हैं वापस बॉलीवुड की बातें करने के लिए। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल आपको दिए जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही प्यारा वाला गाना जो है वो मैंने यहाँ पे क्यों किया हुआ है वो बजाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है बॉलीवुड सरताज बनने के लिए कि जो कांस फेस्टिवल है वो किस राष्ट्र से, किस देश से संबंधित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही फटाफट आंसर आप मुझे।

0: संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: The Prime Minister encouraged the new appointees to make the most of the IGOT Karmayogi platform, noting that it would help them grasp their responsibilities with ease. Mr. Modi expressed confidence that these new appointees would contribute to the nation's progress and that their work and decisions would play a key role in realizing the vision of Viksit Bharat.